0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे तिमिर घोष। यह रागम 24 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए, प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट तिमिर घोष। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंक्लूडिंग द प्रोग्राम दिस इवनिंग वी प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट अमियांशु मुखर्जी।

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज Amyangshu Mukherjee. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग भैरवी में गिटार वादन. आज के कलाकार हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य. आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सुधीर घोराई. तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरवी में गिटार वादन, कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. लिसन टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग भैरवी. आवर आर्टिस्ट इज पंडित देवाशीष भट्टाचार्य. Accompanying him on the harmonium is Sudhir Ghorai. Listen now to a guitar recital in the rag Bhairavi. Our artist, Pandit Debashish Bhattacharya.

0: इस संगीत के तहत अभी आप राग भैरवी में गिटार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर घोराई। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बिलास खानी तोड़ी में सितार वादन। कलाकार स्वरूप कुमार बोस। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिंटू दास। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में सितार वादन। कलाकार स्वरूप कुमार बोस।
1: यू वर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग भैरवी। Our artist was Pandit Debashish Bhattacharya. Accompanying our artist on the harmonium was Sudhir Ghorai. This is Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Bilas Khani Tori. Our artist is Swaroop Kumar Bose. Accompanying him on the tabla is Pintu Das. Listen now to the rag Bilas Khani Todi on the sitar. Our artist, Swaroop Kumar Bose.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिलास खानी तोड़ी में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे स्वरूप कुमार बोस। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिंटू दास। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Bilas Khani Todi. Our artist was Swaroop Kumar Bose. Accompanying him on the tabla was Pintu Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं जलतरंग वादन, कलाकार है मिलिंद तुळणकर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मधुकंस सुनते हैं। आलाप जोड़ और झाला मध्यलय रूपक में है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े। तो आइए सुनते हैं मिलिंद तुळणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग मधुकंस।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे जलतरंग पर राग मधु कौस। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले थे गणेश तानवड़े। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी। आलाप जोड़ और झाला विलंबित मत्त ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े। तो आइए सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले पर थे गणेश तानवड़े। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: एच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव में आलाप जोड़ और झाला। विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनीबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कासलीवाल। शी इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: सितार पर बजाया राग नट भैरव, तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है, तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव। सुनीरा कसलेवाल नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग, इन विच यू विल हियर द आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत. मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सरोद वादन से कलाकार अबोली सुलाखे. अबोली सुलाखे सरोद पर प्रस्तुत कर रही है राग अहिर भैरव. आलाप जोड़ तथा मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. आपके तबले पर संगत कर रहे हैं गणेश तानवड़े. सुनते हैं अबोली सुलाखे का सरोद पर बजाया हुआ राग अहिर भैरव.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे अबोली उलाखे का सरोद वादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गणेश तानवड़े। शास्त्रीय वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुन रहे सितार वादन, कलाकार है संध्या आपटे। संध्या आपटे सितार पर प्रस्तुत कर रही है राग मियाँ की तोड़ी, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है प्रशांत पाठक। सुनते हैं संध्या आपटे का सितार पर बजाया हुआ राग मियाँ की तोड़ी।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे संत अफ्रीका सितार वादन राग थामिया की तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत फाटक। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: രാഗം 24/7 DTH.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झप ताल और रूपक ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं सुब्रतो मन्ना. आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं कामलाक्ष मुखोपाध्याय. सुब्रतो मन्ना अपने तबला वादन का प्रारंभ झप ताल

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप झपताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुब्रतो मन्ना। सुब्रतो मन्ना अपने तबला वादन का समापन रूपक ताल से करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं रूपक ताल में तबला वादन, कलाकार सुब्रतो मन्ना।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुब्रतो मन्ना। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे कामलाक्ष मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Chaptal followed by Rupaktal. Our artist was Shubrato Manna. Accompanying our artist on the harmonium was Komolakho Mukhopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन. कलाकार हैं रत्नाकर पई, राग है ललित. विलंबित खयाल झपताल में निबद्ध है, बोल हैं घटन लाग रैन. द्रुत खयाल तीन ताल में निबद्ध है, बंदिश के बोल हैं पीयू पीयू रटत पपीहरा. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल ददूखा. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय रत्नाकर पाई. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग ललित. The accompaniment has been provided by Ismail Dadukhan on the tabla.

अब आप सुनेंगे राग सारंग में मध्य लय ख्याल जो झपताल में निबद्ध है। बोल हैं ऊधो धन धन तुम बिहारी। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल हैं या रब में रचो। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल ददू खां और सारंगी पर समद खां। नाउ लिसन टू राग सार

अगली प्रस्तुति है राग काफी कान्हड़ा। इसमें आप सुनेंगे त्रिताल में निबद्ध विलंबित ख्याल, बोल हैं लागी रे मद पिया। नाउ लिसन टू राग काफी कान्हड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे रत्नाकर पाई, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय रत्नाकर पाई। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं अभिजीत राय चौधरी का बजाया रुद पर राग नट भैरव. विलंबित एवं द्रुत दोनों बंदिशे तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सरोद रिसाइटल बाय अभिजीत राय चौधरी. ही इज प्रेजेंटिंग राग नट भैरव. बोथ द विलंबित एंड द्रुत बंदिश आर बेस्ड ऑन तीन ताल. अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट.

रागम 24 घंटे सातुदीन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरुद पर राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं उन्हीं का बजाया सरुद पर राग चारुकेशी। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग चारू के शी। वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सरोद। ही वॉज प्लेइंग राग चारू के शी। नाउ ही इज गोइंग प्रेजेंट राग मिश्र भैरवी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

ये है रागम 24 घंटे सातु दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र रवि। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव. विलंबित गत तीन ताल में और मध्य लयगत झप ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Satish Prakash Kamar in Rag Bhairav. The Vilambit Gat is said to Teen Tal and Madhyale Gat is said to Jhap Tal. He is accompanied by Ustad Fayyaz Khan on Tabla.

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग भैरव सुन रही थी। और लीजिए अब सुनिए राग मदमात सारंग। मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद फैयाज खाने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग भैरव बाय सतीश प्रकाश कमर। नाउ लिसन टू राग मदमात सारंग। द मध्यलय गत एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सतीश प्रकाश कमर का शहनाई पर बजाया राग मधमाद सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद फैयाज खाने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मधमाद सारंग। ही वाज अकंपनीड बाय उस्ताद फैयाज खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है संजीव अभ्यंकर के स्वर में।

संत जनाबाई की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। अब हम सुनाने जा रहे हैं शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संजीवनी जोशी के स्वर में।